0: नच दी।
1: लीव लाइव लीव तेरा
2: स्कैन इन द रूम डू यू फॉरगेट टॉकिंग टू मी टॉकिंग द लाउडेस्ट।